करने पे, या लिखूं उस चांदनी के मरने पे, या लिखूं तेरी नजरों के जादू पे, या लिखूं के शर्मा के झुकने पे, या लिखूं उन पहाड़ों के बारे अब जिनके किनारे हम सड़कें बनाकर तो कहने को घर जा रहे हैं सफर।

0: तब इसमें अजीज वंत हकीम वंत खलव खमगा अल्लाह वोट गिम्बे।
1: दिवे एफएम दिवे हिन्नायको नुमा दिया एक मेगाहर्ट्स
2: अलिनूर

0: और मैंने दिन ली बिफ वहाँ के कि मैसेज की वारा कुरु मैसेज इंगे तो मी मैसेजेस और मैंने हिस्सा को फपनी हाथे तीने एकिंग हाय नुए फाय नुए मी नंबर टेक्स्ट मैसेज कुं मादो लव्स तक के एक अमको बुने तें बेनु भी खुरी हाँ वहाँ के और ने हितुं मी मैसेज को फनी पुने तीफा
1: आदाग मतिं आदिवस पायफार उदेजोड सायब हेट्टे एकां हिंगिफा हुं अम्मस वेज्जे ekan hutteni kongira ko kamen ahanna kanneenge aharin beenum vi hamai kani komme vis mihike gaatuga miwahaka bunelon
0: aadavikin behette te joodu sa ekuga ulunu dostan maasige tere gelligen daata maafahun vis hiddatika ma falukan as vannani dirulumge emme kudikudi mifada aadata hoge tere Miha Duratiyes e miha kaayeku ufidifawa kudikudi aadatan hitun fuhilumaki eha fasih kamenu ehenu. Ehi evvis ade padinneti himeen kamayeku ees hirrovwala handaantan.

मी नवाजते कनोदी हाय कन कोई मशहूर बॉलीवुड के फिल्म जीने की राह के एम मकबूल लवा आम को मिलवा मशहूर फवनी आने से उसके आए बहार नुवता बाली मस्तानी है मेरी महबूबा मिगोता मिलवे की इंडिया के रूहानी अटकेवेरिया मोहम्मद रफी की आदि फवा वरंग सरुकत लवे लवागे म्यूजिक कंपोज कुरी मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर उनका मवा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल मिलवागे रीति लेंग हदा फवनी आनंद बख्शी फिल्म का मिलवा फेनिकेंदनी जितेंद्र आदि तनुजा